स्वागत है आप सबका रेडियो एडिलेड 101.5 एफएम रिच एंड रियल पर। यह है आपका प्यारा प्रिय भारती हिंदी कार्यक्रम जो आपके लिए प्रसारित होता है हर महीने में प्रथम रविवार पर दोपहर 1 से 2 बजे तक। जैसे आप जानते हैं रेडियो एडिलेड पर बारी से महीने के रविवारों पर दोपहर के समय हिंदी, बांग्ला, गुजराती और पंजाबी भाषाओं में प्रसारण होते हैं, ये भी आप जानते होंगे जरूर। इन 4 भाषाओं के क्रम से जैसे मैंने अभी बताया है, यानी पहले रविवार पर हिंदी, दूसरे पर बांग्ला, तीसरे पर गुजराती और चौथे पर पंजाबी कार्यक्रम। और हाँ, ये बताना तो भूल ही गई थी कि मैं शंपा आपकी होस्ट और दोस्त हूँ आज की प्रस्तुति के लिए। और आज का प्रोग्राम है सदाबहार, एवरग्रीन और बिल्कुल संगीतमय, क्योंकि ये शो इसलिए बना है कि इसे साल में कभी भी सुनाया जाए जब अचानक ऐसी कोई स्थिति आई कि कोई वार्तालाप, कोई समाचार या ज्ञान या विज्ञान या कला को लेकर कार्यक्रम नहीं बन पाया हो, ढेर सारे बातचीत वाले, तो किसी विशेष कारण से ऐसा नहीं हो पाया है, बातचीत वाला कार्यक्रम नहीं बन पाया है इस रविवार को। लेकिन कोई फिक्र नहीं दोस्तों, ऐसे ही समय पर सुंदर मौका बन जाता है हमारे हिंदी फिल्मी गीतों के खजाने से आपको चुन चुन के कुछ श्रेष्ठ गीतों को सुनाने के लिए। तो आज आपके लिए शानदार 60s के गीत लाई हूँ अपनी झोली में भर के, आपकी यादों को जगाने वाले हिंदी फिल्मों के गाने ही गाने, सुपर शानदार 60s के गाने। तो आइए शुरू हो जाएं। हाँ जी, तुरंत।

सुंदर दो गाना सुना अभी आपने, किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी की आवाज में। गीतकार यानी लिरिसिस्ट थे शैलेंद्र जी और म्यूजिक दिए हैं इसे सचिन देव बर्मन जी। 1965 की बेहद लोकप्रिय फिल्म गाइड का ये पॉपुलर गाना था, आप जरूर सुने होंगे इसे पहले भी। हाँ, तो हम चल पड़े हैं इसी के साथ 1960s के दशक में बने हुए हिंदी फिल्म जगत के कुछ बेहद आकर्षक गीतों को सुनने के लिए। आइए अब आगे सुनते हैं एक सदाबहार प्रेम गीत मोहम्मद रफी जी की आवाज में। लिरिक्स है शकील बदायूनी जी के और म्यूजिक दिए हैं इसको रवि साहब ने, और ये गीत है 1960 में बनी हुई 14वीं का चांद फिल्म से। तो आइए इसका

साल 1967, फिल्म हमराज, आर्टिस्ट महेंद्र कपूर जी, गीतकार सही लुधियानवी जी और संगीतकार फिर से रवि जी। आइए सुनते हैं ऑसम गाना, तुम अगर साथ देने का वादा करो।

दोस्तों, आज आप है रेडियो एडिलेड 101.5 के प्रिय भारती हिंदी कार्यक्रम पर शंपा के साथ। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया है, आज मेरे पास गीतों की झोली में बेहद सुंदर गाने हैं जो 1960s के दशक में बने थे। तो चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और इस श्रृंखला में अगला गीत सुनते हैं। बहुत सुंदर गाना, वो शाम कुछ अजीब थी। फिल्म है खामोशी 1969 की, गाए हैं इसे किशोर कुमार जी, लिरिसिस्ट हैं गुलजार, म्यूजिक डायरेक्टर हैं हेमंत।

फिल्म उद्योग की एक जानी मानी आवाज और बेहद लोकप्रिय आवाज। गाने का अंदाज उनका बहुत ही स्पेशल और बेहद सुहाना। जी हाँ, अब मैं आशा भोसले जी की बात कर रही हूँ। उन्होंने अनेक भारतीय भाषाओं में ढेर सारे गीत गाए हैं अपने लंबे कैरियर के दौरान और अनेक अनेक हिट सॉन्ग्स रचे हैं और हमारे दिलों को आनंद पहुंचाए हैं। तो आइए अब आशा जी की आवाज में सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा गीत। फिलोसॉफिकल गीत है ये और काफी लोकप्रिय गीत है, आगे भी जाने न तू। और क्रिएटिव टीम में फिर से नाम आते हैं रवि साहब और सहीर लुधियानवी साहब के। चलिए इस लाजवाब गीत का आनंद लेते हैं जो 1965 की वक्त फिल्म से लिया गया है। लेट्स एंजॉय।

सुंदर गीत सुने अभी आपने आशा जी की मधुर आवाज में, और आगे आपको जल्दी ही परोस रही हूँ एक और प्यारा सा गाना। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो। ये 1963 की बनी फिल्म एक दिल सो अफसाने का गीत है। ढेर सारी यादें जुड़ी हुई है इस फिल्म के साथ। उस जमाने के दो श्रेष्ठ एक्टर्स राज कपूर साहब और वहीदा रहमान जी इस फिल्म में लीडिंग रोल्स पर थे, और इस गीत में आप सुनेंगे उस जमाने के एक बहुत ही निपुण प्लेबैक सिंगर की आवाज, मुकेश जी की कभी ना भुलाने वाली आवाज। संगीतकार शंकर जी जयकिशन जी की रचना है ये, गीतकार हसरत जयपुरी साहब के शब्दों पर।

तुमने पुकारा और हम चले आए रे। शानदार 60s की गाड़ी आगे छुट रही है इस गीत को लेकर। मूवी है राजकुमार, 1964 की फिल्म है ये। लाजवाब डुएट गए हैं मोहम्मद रफी साहब और सुमन कल्याणपुर जी, और रचनाकारों की टीम में फिर से मौजूद हैं संगीतकार शंकर जी और जयकिशन जी, और गीतकार हसरत जयपुरी साहब।

गाड़ी चल रही है इस रविवार दोपहर रेडियो एडिलेड के प्रिय भारती हिंदी शो पर और इसे चला रही हूँ बहुत ही उल्लास के साथ आज मैं शंपा। दोस्तों आज यानी इस प्रस्तुति में हम ट्रैक पर हैं पुरानी हिंदी फिल्मी गीतों की दिशाओं में और बेशक आप इस यात्रा का भरपूर आनंद उठा रहे हैं, है ना? तो चलिए मैं अपनी बातें जल्दी से बंद करती हूँ और आपको एक मस्त मस्त मस्त गीत की ओर ले जाती हूँ। रूप तेरा मस्ताना इसका नाम है। ये गीत राजेश खन्ना जी और शर्मिला टैगोर जी पर दर्शाया गया था 1969 के बहुत ही सुंदर फिल्म आराधना के लिए, एस डी बर्मन जी के संगीत पर और आनंद बख्शी जी के शब्दों पर। और गीत को किसने गाया है ये तो सबको मालूम है क्योंकि ये जादू भरा स्वर हम सभी के दिलों में बसा हुआ है। तो चलिए इस प्यारे वॉइस को एक बार और सुनते हैं।

आइए पलट के देखते हैं 1961 की फिल्म हम दोनों की ओर और मधुर डुएट सुनते हैं मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी का गाया हुआ, संगीत है जयदेव जी का दिया हुआ और लिखे हैं इस गीत को रही लुधियानवी जी।

60s के शानदार पुराने गीतों की सिलसिला में आगे सुनते हैं फिर से किशोर दा को. गाना है ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, फिल्म तीन देवियां से जो 1965 में निर्मित हुई थी. एसडी बर्मन साहब और मजरू सुल्तानपुरी साहब हैं इसके म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट, और एक्टर्स देवानंद जी और नंदा जी इस फिल्म में भूमिका निभाए थे. तो इस सुंदर गीत को सुनते हैं और इन सब कलाकारों को याद करते हैं.

साल 1968 में शम्मी कपूर जी ने एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म हमें दिया। नाम था इस फिल्म का ब्रह्मचारी। तो इस फिल्म के गाने बहुत ही पॉपुलर बने थे और इसमें से एक है ये डुएट आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी इसे गाए थे और संगीत दिए थे शंकर जी और जयकिशन जी ने और कवि शैलेंद्र जी इसके बोल लिखे थे। तो आइए हम सब मिलकर इस झूमता हुआ मस्त मस्त गीत का भरपूर आनंद लेते हैं और पुरानी यादों को जगाते हैं।

और इसी के साथ ही हम रेडियो एडिलेड 101.5 एफएम पर प्रिय भारतीय हिंदी प्रोग्राम के आखिरी पद पर पहुंच गए हैं और आपको आज की

और अवश्य आपके मनोरंजन के लिए भी। 1960 की फिल्म मुगले आजम हिंदी सिनेमा इतिहास की सफलतम फिल्मों में से एक है और इसका अनेक सुंदर गीतों में से एक गाना जब प्यार किया तो डरना क्या हिंदी फिल्म जगत के दिल को छू लेने वाले श्रेष्ठतम प्रेम गीतों में माना जाता है। अनारकली की भूमिका में मधुबाला जी गजब का अभिनय अदा की थी जो आज भी हमारे यादों में बसा हुआ है। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। शकील बदायूनी साहब के लिखे हुए ये सुंदर लिरिक्स नौशाद साहब की लाजवाब संगीत रचना और हम सब की प्यारी लता जी की मधुर आवाज आपके लिए परोसते हुए अब मैं शंपा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे जल्दी ही कभी। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।